एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि, तदनुसार दिनांक 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम भक्ति धारा।

कार्यक्रम से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये गणेश वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और चलिए, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला भजन, जिसे अपनी आवाज दी है हरिहरन ने।

श्रोताओं, हरिहरन के स्वर में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब हम सुनते हैं सिद्धार्थ मोहन का गाया ये भजन।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप अपने रेडियो दोस्त संदेश करतकर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

श्रोताओं, कार्यक्रम भक्तिधारा में अभी आपने सुना सुरेश वाडकर का गाया ये भक्ति गीत। और आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश की आवाज में ये भजन।

0: नितिन मुकेश के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चिंतन।
1: संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ शायद हमने नहीं समझा। विश्व के अधिकांश देशों में धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात धर्म के मामले में शासन उदासीन रहेगा, किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फलतः विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्मों के अनुसार त्योहार मनाने, आचरण और कर्मकांड करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह धर्मनिरपेक्षता का मात्र नकारात्मक पक्ष है। यह हमें धर्मों के प्रति उदासीनता या धर्म विहीनता की स्थिति तक पहुंचा देता है। इससे सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के घेरे में घिर कर रह जाते हैं। इसका परिणाम होता है सभी धर्मों और धर्मावलंबियों के बीच संवादहीनता। इसका लाभ उठाकर कुछ लोग अपने कर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे धर्मों में दोष दिखाने लगते हैं। इससे धर्मों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है और मनुष्य मनुष्य को जोड़ने वाला धर्म मनुष्य मनुष्य को तोड़ने वाला धर्म बन जाता है। वास्तव में धर्म वही जो प्रीति जगाए, भाईचारा हमें सिखाए, आंखों के आंसू भी पोंछे और अमन के फूल खिलाए। इसलिए हमें धर्म

0: धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। उसे सर्वधर्म संभाव के रूप में ग्रहण करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले इसके लिए पहल की थी। उनकी सर्वधर्म प्रार्थना इसका ज्वलंत प्रमाण है। दुर्भाग्य से हम इसे भुला बैठे हैं। हमें शैक्षणिक स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना का चलन प्रारंभ करना चाहिए। प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं को यह बताया जाना चाहिए कि सभी धर्म ईश्वर तक ले जाने वाले रास्ते हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा या अच्छा बुरा नहीं है। ऐसी सोच ही हमें धार्मिक सौहार्द, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्शों तक ले जा सकती।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। लीजिए पेश है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर और साथियों की आवाजों में श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

सुरेश भाटकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मदन मोहन शुक्ल और इनके साथियों के गाए ये लोकगीत।

मदन मोहन शुक्ल और साथियों के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी में। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजने को है हिंदी में समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों, एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हो चुके हैं और अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाने का। तो पेश है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से, और 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ जनोपयोगी सूचनाएं। फुलवारी ये कार्यक्रम होगा आज सुबह 8:30 पर, जिसमें आज नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बातें होंगी कबाड़ से कमाल का इनोवेशन कैसे करें इस विषय पर। सुबह 9 से 10 तक सुनिएगा विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से, और सुबह 10 आकाशवाणी केंद्र भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

हेलो एफएम बैतूल फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 10:05 पर और सुबह 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से मन की बात। श्रोताओं सुबह दोपहर 12 बजे से शाम 5:30 तक सुनेगा विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से और शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय है तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी। कार्यक्रम के सेगमेंट में आप सुनेंगे एक फनकार राजकुमार राव के साधारण से असाधारण बनने की कहानी और साथ ही स्तंभ में होंगे सक्सेस टिप्स, मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करें। श्रोताओं आज शाम 6:05 पर सुनेगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज हमारे कलाकार हैं छावल सिंह उइके। शाम 6:30 पर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भजन गजल कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत।

ग्राम सभा हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। सामूहिक कृषि चर्चा होगी तोरई एक सब्जी फसल इस विषय पर, साथ ही श्रृंखला बातें खेती किसानी में आप जानेंगे जानकारी, साथ ही होगी बाजार भाव और मौसम की जानकारी। आज रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम शीर्षक संगीत और 8:15 पर आकाशवाणी केंद्र भोपाल से आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास के साज और आवाज। ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर और 8:45 पर सुनेगा कार्यक्रम समाचार संध्या एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10 बजे और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा जगजीत सिंह के गाए चंद नगमे। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ, 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए, प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पूर्व द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगरमालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पूल का नाम कैप्टन बजरंग प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाये रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदानीरा समागम के 4th दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई। और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हो चुके हैं और अब वक्त हो चला है क्लासिक फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों के झरोके से का। और आज आपके लिए क्लासिक नगमों को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त संदेश खातकर। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म शागिर्द के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल मजरू के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर का गाया गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था मजरू ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म शागिर्द से ये गीत आप सुन रहे थे। और श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिलाषा से ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल मजरू के हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

अंदाज मजरू का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और श्रोताओं, क्लासिक नगमों का सफर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से में फिल्म दाग से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। बोल साहिर के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 103.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना फिल्म बॉबी से, जिसे गाया था शैलेंद्र सिंह ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में संतोष आनंद का लिखा ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म रोटी कपड़ा मकान से ये गीत हम आप तक पेश कर रहे हैं।

0: लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत आप सुन रहे थे और श्रोताओं घड़ी के कांटे इशारा कर चुके हैं कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो दीजिए कार्यक्रम यादों के झरोके से आपके अपने रेडियो दोस्त संदेश करतकर को इजाजत। नमस्कार। FM वेव 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले ये सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, 30 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन। जिला जनसंपर्क बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोसमी में इस वर्ष संस्था में प्रवेश को लेकर छात्राओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। विगत सत्र में सभी 10 ट्रेडों में शत प्रतिशत प्रवेश होने के साथ बैतूल जिले ने महिला प्रवेश के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। संस्था में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस, कोपा स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी, ऑफिस असिस्टेंट कम ऑपरेटर, ऑपरेटर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग तथा स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग जैसे रोजगार परक ट्रेड संचालित है, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राएं देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार कर सकती हैं। प्रवेश अधिकारी ने बताया कि इस संस्था में मध्य प्रदेश शासन की एकलव्य योजना के अंतर्गत संस्था के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन सुविधा के साथ 1,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को बड़ी राहत मिल रही है तथा वे सुरक्षित वातावरण में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही है। संस्था के प्राचार्य ने कहा कि इस संस्था में सभी वर्ग की छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। महिला आईटीआई कोसमी में संचालित सभी 10 ट्रेड छात्राओं के कौशल उन्नयन, रोजगार एवं स्वरोजगार की दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। वहीं अंग्रेजी विषय में रुचि रखने वाली छात्राओं के लिए स्टेनो अंग्रेजी ट्रेड रोजगार का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आधुनिक एवं तेजी से उभरता हुआ रोजगार परक ट्रेड है, जिसमें भविष्य की व्यापक संभावना है। संस्थान की छात्राएं वर्तमान में फॉक्सकॉन, बेंगलुरु, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, होसुर, प्रतिभा स्टैक्स इंदौर, वर्धमान, बुधनी तथा आईसर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित होकर आत्मनिर्भर बन रही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहां की छात्राएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बैतूल जिले की प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर चुकी है। विगत सत्र में संस्था की छात्रा ने प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया है। समस्त छात्र छात्राओं से अपील है कि शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में प्रवेश के लिए DSD पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर जाकर अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराए। प्रवेश संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रवेश प्रभारी के नंबर हम आपको बता रहे हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 9406547329, 8319630429। ये तो थी पहली सूचना। और दूसरी सूचना इस प्रकार, ई विकास प्रणाली के तहत आवेदन अनुमोदन कराने किसानों से अपील। जिला जनसंपर्क बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2026

0: 2020 में किसानों को सुगमता से कृषि उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई विकास प्रणाली वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान के तहत जिले में खाद वितरण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के ऐसे किसान जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने खाद प्राप्त करने के लिए ई विकास प्रणाली के पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए हैं, वे अपने आवेदन शीघ्र अनुमोदित कराएं। उन्होंने बताया कि वन पट्टाधारी, राजस्व पट्टाधारक, सिकमी किसान, धर्मार्थ ट्रस्ट, एग्रीकल्चर फॉर्म, केवीके यूनिवर्सिटी, मृत किसान एवं अक्षम किसान सहित अन्य पात्र किसान अपने क्षेत्र के पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर पोर्टल पर दर्ज आवेदन का सत्यापन एवं अनुशंसा कराए। उन्होंने बताया कि आवेदन अनुशंसित होने के बाद किसानों को ई टोकन जारी किए जाएंगे, जिसके माध्यम से वे निर्धारित केंद्रों से आसानी से खाद प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने किसानों से समय पर प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की है। श्रोताओं, कार्यक्रम में थी ये सूचना और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियां हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी बच्चों की मनुहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति, रविवार सुबह 8:30 बजे।
2: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 बजे पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को।
3: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
2: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
4: पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
2: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
5: FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
6: सुबह सवेरे
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM वेव 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नहीं

0: दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबककर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए

0: पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आलफियान की जोड़ी से होगा।

0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उम्मीद नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening.

जय हिंद सुप्रभात कहने अपने बाद आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दीदी संगीता श्रीवास्तव और हाजिर हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम फुलवारी के साथ। तो चलिए बिना देरी के जान लेते हैं कि आज की फुलवारी में क्या है खास आपके लिए। बच्चों, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा तो हम करेंगे मगर बीच बीच में

मीठे मीठे गीतों से हम आपका मनोरंजन भी करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी है खास आपके लिए फुलवारी में, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। तो चलिए सबसे पहले आज हम ये जान लेते हैं कि आज का हमारा जो विषय है वो क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले। बच्चों, हमारे आपके हम सभी के घर में या घर के आसपास कुछ सामान ऐसा होता है जिसकी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ती, पर फिर भी वो हमारे घर का कोई ना कोई कोना जो है या कोई जगह जो है उसको घेर कर बैठा होता है, या वो जगह उसके कारण घिरी रहती है। कितना अच्छा हो कि हम इन वस्तुओं का कहीं और उपयोग कर लें, तो जगह भी खाली होगी और कुछ नया सामान इससे जो बनाया जा सकेगा वो हमारे काम भी आएगा, हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे, यानी कि एक पंथ दो काज। तो बच्चों, आज का हमारा विषय भी यही है कि कबाड़ से कमाल का इनोवेशन, मतलब वो सामान जिसे हमने कबाड़ मानकर इधर उधर पटक दिया है उसका उपयोग हम किसी न किसी तरीके से कर लें और वो कबाड़ जो है वो हमारे काम का बन जाए। तो आज हम इसी विषय पर, मजेदार से विषय पर करेंगे चर्चा, मगर फिलहाल एक प्यारा सा गीत भी जरूरी है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बच्चों, आज का हमारा विषय जो है वो बहुत ही मजेदार है, कबाड़ से कमाल का इनोवेशन। यानी कि कुछ जो पुरानी बेकार पड़ी हुई चीजें हैं उनसे हम कुछ ना कुछ अच्छा या नया बना लें जो कि खूबसूरत भी हो और उपयोगी भी हो। अब इसमें हम ऐसी कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे इनमें कई वो सामान आते हैं जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। अब इसमें हम इनको ले सकते हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही बात आती है, पानी की बॉटल, जूस की बॉटल या प्लास्टिक के डिब्बे, टीन के डिब्बे, जिनमें कई तरीके के मटेरियल आजकल खाने की पैकिंग जो है सब इसी तरीके से हो रही है। तो वो जो आते हैं तो उनको हम एक बार यूज करते हैं, फिर उसके बाद वो इधर उधर पड़े रहते हैं, या तो डस्टबिन में पड़े रहते हैं या कहीं नाली में पड़ जाते हैं तो नाली को चोक कर देते हैं। तो इस तरीके से वो चीजें खराब होती रहती हैं, मतलब उनका उपयोग है लेकिन वो हमारे वातावरण को भी खराब करती, पर्यावरण को भी खराब करती है और इधर उधर पड़ी वो अच्छी भी दिखाई नहीं देती है, जगह भी घेरे रहती है। तो अगर हम उनसे कुछ उपयोगी चीजें बना सकें, आपके दिमाग में इस तरीके की जो क्रिएटिविटी वो आनी चाहिए कि इनसे क्या बनाया जा सकता है जिससे ये खूबसूरत भी लगे, काम की भी दिखे और जगह घेरे लेकिन उस जगह को खूबसूरत बना दे, उसका लुक जो है बहुत अच्छा दिखने लगे, तब तो मतलब की बात है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज आती है जिनको हम बार बार यूज करते हैं और पुराना होने के बाद उन्हें हम इधर उधर पटक देते हैं। इनमें हम कपड़े, जैसे कि मम्मी की साड़ियां हैं या सभी ये कपड़े जो हैं वो जिसमें साड़ियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो सकता है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, पहना पहना पहना, या तो छोटा हो गया या पुराना हो गया, तो बस ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग क्या होगा कि हम पुराने जो बर्तन भांडे बेचने वाली जो भाइयां आती हैं उनको हम पुराने कपड़े देते हैं और उनसे नया कुछ भी बर्तन खरीद लेते हैं। तो चलिए ठीक है, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं यूज हो जाता होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी है कि किसी को देने लायक नहीं है, कोई ले ही नहीं रहा है उसको, तब फिर हम उसको काट पीट कर कुछ ना कुछ उसका बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो जो साड़ियां हैं उनका गोल गोल कुछ कुछ बुन बुन कर पैरदान बना देती हैं, वो जो कि पैर पोछने के काम आता है, तो इस तरीके से होता। और कपड़ों का हम क्या करते हैं, या तो हम पोछा बना डालते हैं या फिर काट पीट कर इधर उधर हाथ पोछने के लिए लटका देते हैं, मतलब कोई ऐसी कोई खास क्रिएटिविटी हम उनकी कर नहीं पाते। अब गत्ते के डिब्बे, हमने कोई भी सामान लेके आ गए, हमने कपड़े लाए, जूते लाए या कोई खिलौना लाए, तो काहे में आते हैं पैक होके, वो गत्ते के डिब्बों में ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको इकट्ठा करके रखेंगे, उसमें थोड़ा बहुत कुछ सामान रख दिया और नहीं तो वो भी इधर उधर पड़े हैं, जबकि इनसे भी हम कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं या इनको खूबसूरत सा बना के इसको हम ऑर्गेनाइजर बतौर यूज कर सकते हैं। मतलब घर में जो छोटी छोटी डिब्बियां इधर उधर फैली हैं तो कुछ छोटे छोटे सामान को हम ऑर्गेनाइज करके इनमें रख सकते हैं, इनको बाहर से अच्छा सा सजा संवार के घर

में रखेंगे तो ये खूबसूरत दिखती हैं। अब बच्चों गर्मियों का समय है, सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, और वो भी डिब्बों में आती हैं, छोटी डिब्बी, थोड़ी बड़ी डिब्बी और बड़े बड़े और डिब्बे भी आते हैं। अब ये कहाँ जाते हैं? ये भी डस्टबिन में जाते हैं, जबकि हम इन खाली डिब्बों पर सुंदर रंग पेंट करके, स्माइली चेहरे बनाकर इनका इस्तेमाल शोपीस के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक की खाली बोतलों को काटकर हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। हम कई बार देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी क्रिएटिव हैं तो हम मोबाइल चलाते हैं तो उनमें रील्स में कई सारी चीजें बनाई जाती हैं इन पुरानी बोतलों से और पुराने डिब्बों से। पेन स्टैंड बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजर तो बनाए ही जाते हैं, गुलदस्ते बनाए जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बच्चों मैंने तो मेरे बचपन में एक हमारे हम जब बच्चे हुआ करते थे तब बहुत सारी चीजें ऐसी पैकिंग में नहीं आया करती।

ने तो मेरे बचपन में एक हमारे हम जब बच्चे हुआ करते थे तब बहुत सारी चीजें ऐसी पैकिंग में नहीं आया करती थी, खुली आया करती थी, लेकिन फिर भी हम एक दो चीजें हमें याद है कि हम बनाते थे, जैसे कि माचिस की जो डिब्बी होती है तो उसमें जो तीली रखने वाला पोर्शन होता है वो जब माचिस खाली हो जाती थी तो हम दो ले लेते ले थे, बीच में उसमें छेद कर दिया करते थे और काफी सारा 10-20 फीट का धागा उसमें दोनों किनारे पर बांध दिया करते थे और फिर उसको टेलीफोन की तरह यूज करती थी। और यकीन मानिए बच्चों, वो काम भी करता था। शायद उसका साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि साउंड ट्रेवल करता है ना एयर में, तो उसे एयर मिलती थी और कई दूर तक वो बातें हमें सुनाई आती थी। बड़ा आश्चर्य होता था, तब हम समझ नहीं पाते थे कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन ऐसा होता था। तो बच्चों इस तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं, अगर मुझे याद आएगा जैसे जैसे मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मम्मी देखिए आप तो साड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, आप तो ज्यादा से ज्यादा उससे खेलेंगे, अगर छोटी छोटी बच्चियां हैं तो साड़ी लपेट कर बैठ जाएंगी, लिपस्टिक लगाकर बड़ा सुंदर सजने का प्रयास करेंगी, वो भी ठीक है। लेकिन मम्मी जब उस पैरदान को बनाती है तो आप सोचिए, जिस साड़ी को हमने एक कोने में पटक दिया था, कई दिनों से वो काम नहीं आ रही थी और मम्मी ने उसे इतना खूबसूरत पैरदान के रूप में बदल दिया कि जब वो हमारे घर के दरवाजे पर रखा तो हर कोई आने जाने वाला पूछता, अरे ये किसने बनाया, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो अब आप देखिए ना, उसने जो आपकी मम्मी ने उन्होंने जो क्रिएटिविटी की उससे उन्होंने कितनी तारीफ पाई, और साथ ही साथ जो बारदाना है वो भी निपट गया, मतलब जो पुराना सामान था वो भी किसी काम के आ गया। अब ऐसे ही आप अगर खड्डे के डिब्बों का उपयोग करते हैं तो बच्चों स्कूल के काफी सारे प्रोजेक्ट आप बना पाते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे कि कई बच्चों को मैंने देखा है, वो बड़े बड़े जो खड्डे होते हैं उन्हें लेकर उनमें छोटी छोटी बॉल लगाकर नवग्रह का प्रोजेक्ट बनाकर लाते हैं स्कूल में। कई सारे कुछ अच्छे सुंदर सुंदर फैक्ट्रियों में वो कुछ कुछ मशीनरी लगा के और बड़े अच्छे अच्छे बनाते हैं चीजें, मतलब काफी सारा क्रिएटिविटी वो अपनी उसमें दिखाते हैं। और इस तरीके के इनोवेशन से जब बच्चों को तारीफ मिलती है तो बच्चे बहुत ही खुश भी होते हैं। तो चलिए इस समय तो हम भी अपने नन्हे दोस्तों को खुश कर देते हैं, सुनवाते हैं उन्हें एक प्यारा सा गीत।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गया।
1: तो नई साड़ी ली?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: बच्चों, आपको पता है जब हम कबाड़ से जो चीजें मतलब इधर उधर पड़ी हुई हैं वो कबाड़ ही कहलाती हैं, और उन चीजों का जब हम उपयोग कर लेते हैं तो इससे हमें कई सारे फायदे होते हैं। जो कबाड़ इधर उधर हम फेंक देते हैं उससे पर्यावरण दूषित होता है, और ऐसे में इनका अगर हम सही उपयोग करके इन्हें इनकी सही जगह पर व्यवस्थित कर देते हैं तो इससे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई सारे प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा योगदान हम लोग भी देंगे तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होगा और हमारी सेहत के लिए भी होगा। दूसरा, घर के लिए महंगे महंगे डेकोरेटिव आइटम जो है हम खरीद कर रखते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा जाता है, तो अगर हम उनकी जगह पर अपने हाथों से बनाए ये खूबसूरत चीजें, अगर हम जो हमने आइटम बनाए हैं डेकोरेशन के हिसाब से बनाए हैं उन्हें रखते हैं तो ये हमें एक खुशी भी देगा और हमारे जो है पैसे भी बचेंगे जो कि दूसरी चीजों पर खर्च होने वाले हैं, महंगे महंगे डेकोरेटिव आइटम पर। जैसे दिवाली के समय हम लोग करते ना कि दिए वगैरह, पुराने दियो को भी हम बार बार नए दिए क्यों खरीदना है, तो कुछ पूजा के हिसाब से थोड़े बहुत नए दिए लिया और बाकी पुराने दियो को हम सजा सवार कर खूब अच्छे से पूजन के लिए रख सकते हैं, तो ये भी हमारे काम आ जाते हैं। तो बच्चों, समय का बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास समय खाली है तो आप सिर्फ टीवी देखें या मोबाइल पर रील्स देखकर उन्हें बर्बाद कर दे। भाई, खेलेंगे भी कितना, इतनी धूप होती है, शाम को खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत सुबह खेल सकते हैं, उसके बाद दिन भर का टाइम होता है आपके पास, तो ऐसे में अपनी क्रिएटिविटी को आप थोड़ा सा जगाइए

0: और कुछ नया सा खूबसूरत सा बना डालिए। तो बच्चों आज ऐसे ही हमने आपको पहले बताया था, जो कि आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस था, हमने आपको बताया नहीं था कि हम आपको एक जो हमारी श्रृंखला है उसमें हम बच्चों को बुलवाते हैं और उनके द्वारा क्या क्या चीजें की जाती हैं वो हम बताते हैं। तो ये प्रार्थना साहू को जो है वो आपको बताएंगी। इनकी आदत है, ये इधर उधर पड़ी चीजों से कुछ ना कुछ नया बनाती रहती है, इनका शौक है। तो चलिए जानते हैं कि आज वो हमें क्या बताने वाली है कि कबाड़ से कैसे अच्छे अच्छे इनोवेशन किए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रार्थना साहू से।
1: हेलो बच्चों, मैं आपकी अपनी दोस्त प्रार्थना साहू और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कबाड़े से कमाल के इनोवेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आपके घर में रसगुल्ले के डिब्बे, पानी की बोतलें और पुराने कपड़े आते हैं। तो आज हम देखते हैं रसगुल्ले के डिब्बे से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपको एक रसगुल्ले का डिब्बा लेना है, इसके ऊपर कलर पेपर लगाना है। आपने रसगुल्ले के ऊपर कलर पेपर लगा देना है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन चिपकाना है। अब आते हैं हम रसगुल्ले के ढक्कन के ऊपर। आपको रसगुल्ले के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा कट लगाना है, इतना कि आपके उसमें 5 के सिक्के, 10 के सिक्के जा सके। और आपको ढक्कन के ऊपर पेंट कर देना है प्यारा सा पिंक कलर का, जो भी आपको पसंद होगा वो कलर कर सकते हैं। तो देखिए आपका प्यारा सा पिग्गी बैंक तैयार है। तो ये तो ही पिग्गी बैंक की बात। अब हम बात करते हैं पानी की बोतलों की। आपको पानी की बोतल ले लेना है और पानी की बोतल से आप जैसे कि सिक्कों का गुल्लक तो बना ही सकते हैं, स्प्रे बोतल, प्लांट्स के लिए गमले, ये सब भी बना सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए गमलों की। आपको एक 2 लीटर की बोतल लेना है, उसमें चौकोन आकार में एक कट लगाना है। आपने चौकोन आकार में एक कट लगाया, पर देखिए बच्चों ध्यान रखना आप बहुत ही छोटे हैं, तो आपको अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन इनसे कट लगवाना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आपने उसमें कट लगवा लिया है और फिर आप उसमें मिट्टी भरिए थोड़ी थोड़ी करके, और फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी छींचे और उसमें आप एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, या फिर आपको जो भी लगे आप वो वाला पौधा लगा दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। तो अब बात है इसको क्रिएटिव दिखाने की। तो आपको जो आपने पानी की बोतल ली है ना, जिससे आप गमला तैयार कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर एक कलर पेंट पोतना है और उसमें छोटे छोटे से दो आंखें लगाना है। कोई भी प्यारे से कागज से काट के आपको उसमें एक आंखें लगाना है, दो छोटी छोटी सी। तो देखिए आपका प्यारा सा गमला तैयार है। चलो ये तो हुई आज की हमारी कहानी खत्म, कबाड़े से कमाल के इनोवेशन की बात। तो मैं आपको जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगी, आप बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आप बहुत क्रिएटिव भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप भी ऐसी नई नई चीजों का इन्वेंशन कीजिए और आप आपके पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं।
0: तो बच्चों देखा आपने कैसे प्रार्थना ने कुछ बेकार सी पड़ी हुई बोतलों और डिब्बों का सही उपयोग किया है। आप भी देखिए आपके आसपास अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो उसे एक नया सा स्वरूप देकर उपयोगी बनाइए, है ना। आपके भी काम आएगा और आपकी क्रिएटिविटी देखकर आप खुद बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए इसके बाद बारी एक मीठे से गीत की, सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद और आज की मजेदार चर्चा के बाद समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए विदा अपनी दीदी संगीता श्रीवास्तव को। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे नन्हे दोस्तों का पसंदीदा कार्यक्रम फुलवारी। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अनविता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंध की अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।

अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहाँ अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ

मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन भाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए। इस फिल्म में अनिल विश्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल विश्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे।

महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

1941 में आई बहन और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

सन 1940 में फिल्म औरत में अनिल विश्वास ने जो गाना गाया था वो है ये।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है पैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यारम तो प्यारे भजो कल दा।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी की।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल विश्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं।

कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: पंड भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी

0: अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए, जिनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का
2: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो FM बैतूल।
3: हेलो FM बैतूल,
2: दोस्तों हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ, रोने का समय कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेंगी दोबारा। श्रोता, इन्हीं प्यारी प्यारी पंक्तियों के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और आज कार्यक्रम हेलो FM लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त संदेश खड़कर। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं आज के हमारे पहले कॉलर किस गीत की पसंद लेकर आए हैं।
4: हेलो FM बैतूल,
5: नमस्कार सर, कुमारिया से बोल रहा हूँ सर, तुलसीराम राठौर
4: जी। स्वागत है तुलसीराम जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी जी
4: जी तुलसीराम जी, और क्या करते हैं आप?
5: सर खेतीबाड़ी का काम है अपने पास।
4: खेतीबाड़ी का काम है, अभी तो फसलें लगाने के लिए जो है वो जमीन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। और
5: तो सर खेतीबाड़ी का काम चल रहा है
4: जी। अभी कौन कौन सी फसलें हैं?
5: अभी फसलें नहीं सर, पानी का अभाव है अपने यहाँ
4: जी। तो
5: सर
4: बिल्कुल बिल्कुल तुलसीराम जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
5: हमको सुनना है राम लखन का, राम जी बड़ा दुख दीना।
4: जी, और आप अपने परिवार जनों का नाम लेना चाहते हैं?
5: परिवार में है

0: बालक है, एक बालिका है, देवांशु राठौर, बालिका वैष्णवी राठौर
1: जी,
0: परिवार में सभी है सर।
1: बिल्कुल, तो तुलसीराम जी हम आपको सुनवाते हैं राम लखन फिल्म से ये गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हेलो FM बैतूल।
5: हाँ नमस्कार सर जी।
4: नमस्ते जी,
5: मैं किशोर कुमांडे
4: जी। किशोर जी स्वागत है आपका।
5: से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सवेरे 6:15 बजे जो मतलब रेडियो चालू होता है तो यहाँ 11 बजे तक रहता है
4: जी जी।
5: और तो शाम के समय रेडियो सुनते हैं
4: जी जी। यानी आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आप सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं
5: जी। मेरा पूरा परिवार ही है सर, मेरा पूरा परिवार
4: जी
5: आकाशवाणी का शुरू से ही रहा है। और लगभग मैं तो ये मान के चलो सर कि लगभग 45 साल से जुड़ा हूँ इस।
4: क्या बात है, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जेंडे जी। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
5: सर मैं क्योंकि अभी सर पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है
4: जी,
5: तो मैं सुनना चाहता हूँ शंकरा और शंकरा वाला गीत। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और बड़ा मन भावन है सर।
4: हाँ बिल्कुल, ये भजन जो है वो काफी लोकप्रिय है और सुनने में बड़ा मधुर है
5: जी।
4: बिल्कुल।
5: और अभी तो सर अपने मतलब बैतूल में हर जगह कहीं भागवत हो रही है, हर मंदिरों में मतलब भीड़ लगी हुई है
4: जी,
5: और बड़ा अच्छा माहौल लगता है। और साथ में जेठ की गर्मी है।
4: हाँ बिल्कुल, गर्मी भी बहुत है और हाँ। वैसे भी अधिक मास तो जिसे कहते हैं, ऐसे समय में जो है वो भगवान का पूजन अर्चना और जाप जो है वो काफी फायदेमंद बताया जाता है।
5: हाँ, एक महीना तो सर क्योंकि 3 साल में एक बार आता है ये
4: जी,
5: तो ये पूरे माह में मतलब धार्मिक अनुष्ठान ही होते रहते हैं
4: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
5: और फिर धूप भी बहुत तेज है सर।
4: हाँ धूप तो बहुत तेज है और इस धूप से बचने के लिए आप सभी को हम ये गुजारिश करेंगे कि सावधानी बरते और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखे
5: जी
4: जी।
5: और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर
4: जी
5: कि मैं और मेरा परिवार जो है आकाशवाणी बैतूल का हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं
4: जी जी।
5: बहुत अच्छी जानकारियाँ हर कार्यक्रम में मिलती है सर
4: जी। शुक्रिया शुक्रिया।
5: चाहे वो महिलाओं कार्यक्रम हो, चाहे किसान वाड़ी हो
4: जी,
5: चाहे और दूसरे भी कार्यक्रम हो, बड़े लगन के साथ जितने भी एंकर हैं सर
4: जी,
5: बड़ी मेहनत के साथ प्रस्तुत करते हैं।
4: और हम सभी की यही कोशिशें रहती हैं कि हम अपने श्रोताओं तक के बेहतर से बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और आप जैसे श्रोता जब हमारे कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि हाँ हम कुछ ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और आज आप अपने परिवारजनों के या मित्रों के नाम लेना चाहेंगे?
5: जी मैं अपने परिवार का जरूर नाम लेना चाहूंगा सर।
4: बेशक।
5: मेरी पत्नी श्रीमती उषा है, मेरे 2 बेटे हैं शिवम झेंडे, शुभम झेंडे और सुप्रिया झेंडे, और हमारे परिवार में एक नया आया है नक्श।
4: बिल्कुल बिल्कुल, नक्श झेंडे। तो किशोर जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये भजन।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हाँ नमस्ते संदीप भैया जी, प्रणाम।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ भैया
0: जी। और कौन से गीत की आप फरमाइश लेकर आए हैं
1: आज भैया? तलाश कर देते ना, खाई रे हमने कसम
0: जी। तलाश के
1: लता जी का आवाज है
0: जी। आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं।
1: बता रहा हूँ भैया
0: जी,
1: मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से रामस्वरूप गुप्ता, विजय गुप्ता, एचडी गुप्ता, रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रीराम गुप्ता, शशांक गुप्ता, पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसी जैन, प्रीति जैन। संदेश भैया आपसे अनुरोध है, इस गीत को हम श्रोता जितने भाई है रेडियो बैतूल के
0: जी जी
1: उसके साथ सुनेंगे, अदर में ग्रुप में साथ में सबके साथ इस गीत को सुनेंगे। अब आप लोगों को खास करके डेडिकेट है भैया।
0: बिल्कुल गुप्ता जी, हम आपकी पसंद पर ये गीत सुनवाएंगे और आप जैसे श्रोता हमारे साथ में जुड़े रहते हैं इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करते हैं
1: जी भैया। धन्यवाद।
0: तलाश फिल्म से अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी,
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत दिन से तमन्ना थी कि आप लोग से बात करो।
0: जी जी, और आज आपकी तमन्ना पूरी हुई।
1: गाना सुनना है सर जी।
0: बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे ही। क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताएं।
1: मैं जनरल फिजिशियन हूँ, देहात में रहता हूँ, बिहार का वैशाली जिला है।
0: जी,
1: मेरा नाम है डॉक्टर सितारे।
0: डॉक्टर सितारे जी, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है।
1: जी जी,
0: और ऐसे में जो है वो लू के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: खाना हल्का खाए, पानी ज्यादा पिए, और घर से ही पानी पी करके चले। बाजारू सामान, गर्दा पड़ा हुआ सामान नहीं खाए।
0: और सितारे जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म कभी कभी का, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो मित्र है मेरे।
0: जी बताइए।
1: गजराज लोधी है, विजय कुमार पांडे है, आशुतोष देवनाथ है त्रिपुरा के जी, और आप लोग हुए, हम लोग हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी और हम भी हैं। तो चलिए सुनते हैं हम एक साथ आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव।
0: स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद सर जी।
0: और मनोज जी, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: हाँ बिल्कुल सर, कहे की दुकान पर काम कर रहे थे सर, शॉप है
0: जी
1: मेरी, सिलाई वाली मशीन चलाता हूँ सर जी, सोचा कि आज अगर फोन लगा है तो लग गया सर, ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ा।
0: बिल्कुल मनोज जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: हाँ सर जी, आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा पुलिस पब्लिक और उसमें गाना है मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिले।
0: बिल्कुल, तो मनोज जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर, आप ही के रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो एफएम बैतूल।
0: हाँ जी
1: सर राहुल राठौर बोल रहा हूँ।
0: जी राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: और सर
0: और
1: कैसे हो?
0: हम तो बढ़िया है राहुल जी, आप बताएं आप कैसे।
1: सर हम भी ठीक है और गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: गर्मी का आनंद ले रहे हैं आप, और
1: जी
0: आप
1: सर,
0: बस स्टैंड बैतूल से बोल रहे हैं।
1: जी सर बस स्टैंड बैतूल से बोल रहा हूँ सर, शिप्रा
0: बिल्कुल,
1: साइकिल से। जी
0: इसके पहले भी हमने आपका कॉल शामिल किया था राहुल जी। और कौन से गीत की आज फरमाइश लेकर आए हैं?
1: सर, आज तो सर आपकी पसंद का सुन लूंगा मैं सर। जी
0: अच्छा, हमारी पसंद से आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर,
0: बिल्कुल, हमारी पसंद से आपको हम गीत सुनवाएंगे राहुल जी। और अपने दोस्तों के नाम ले लीजिए आप।
1: जी सर,
0: जी
1: नौनी छड़खड़े, अनुभव तिगराम, अमित राठौर, सुमित राठौर, संदीप राठौर, सभी
0: जी
1: मित्र मंडली, और सर इतवार के दिन सुनना चाहूंगा। जी
0: अच्छा, आप इतवार के दिन ही इस कार्यक्रम को सुनते हैं।
1: सर,
0: बिल्कुल राहुल जी, तो हम आपको सुनवाते हैं हमारी पसंद पर ये गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हेलो FM बैतूल।
5: हाँ सर, मैं संतोष गवाड़े गवाड़ेघाट टिकारी बैतूल से बोल रहा हूँ।
4: स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज कौन से गीत की आप फरमाइश लेकर आए हैं?
5: सर आज एक पुराना गीत है फिल्म पाकिजा का, चलो दिलदार चलो
4: जी,
5: चांद के पार चलो का गीत मैं सुनना चाहता हूँ।
4: और क्या करते हैं संतोष जी आप?
5: सर मैं शासकीय शिक्षक था और 2022 में रिटायर हूँ, लगभग 4 साल रिटायरमेंट होने को आए हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, और जैसा कि आप शिक्षक थे और आप अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और शिक्षकों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है
5: जी जी।
4: और अभी जैसा कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के बाद किन गतिविधियों में आप शामिल रहते हैं?
5: सर सुबह तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक योग केंद्र है भगवाना बैतूल में
4: जी,
5: में तो वहाँ पर कुछ रिटायर्ड लोग वहाँ पर शामिल होते हैं, तो सुबह 1 घंटा ये वक्त है ताकि अपना शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हम संतुष्ट तब होते हैं जब हम अमीर होते हैं।
4: अच्छा जी।
5: जो व्यक्ति संतुष्ट है तो अमीर है, और यदि हम स्वस्थ है तो हम भाग्यशाली, तो हम भाग्यशाली बनने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और हमारे स्वस्थ रहने से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सबके हम काम आ सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं है
4: बिल्कुल
5: तो हमारे लिए ही हरी है ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये जो रेडियो हमारे जीवन में बहुत

0: व्यक्ति संतुष्ट है तो अमीर है, और यदि हम स्वस्थ है तो हम भाग्यशाली है। तो हम भाग्यशाली बनने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और हमारे स्वस्थ रहने से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सबके हम काम आ सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं है
1: बिल्कुल
0: हमारे लिए ही हरी है
1: ना। बिल्कुल बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये जो रेडियो हमारे जीवन में बहुत महत्व है सर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो जीवन के काम को भरने का काम करता है, उत्साह भरता है, नित नई जानकारियों से अवगत कराता है।
1: जी
0: और
1: शुक्रिया।
0: ये जो यंत्र है एक सबसे बड़ा तो विश्वसनीय है, रेडियो में आएगा वो सत्य है, और सत्यम से सुंदरम जैसा हम कहते हैं सोचते हैं, अपन सुंदर की पड़ाव में है कि यहाँ तो सारी सच्चाइयों और सारी कुरीतियां बुराइयों सबसे अपन परिचित हो चुके हैं। समझ में आया कि सर अपना जो जीवन है पूरी सच्चाई के साथ में जिए, परिवार को अपन ईमानदारी की रोटी खिलाएं,
1: जी जी,
0: और पसीने की रोटी खिलाएं, और सत्य के साथ में जो जीवन बीतता है उसका एक अलग अनुभव होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये रेडियो में इस प्रकार की बातें जब सुनते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं चुप चुप
1: जी,
0: तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियों से ऐसे हो जाता है कि ऐसा लगता है यार ये तो मुझे सीखना चाहिए।
1: जी जी जी बिल्कुल, शुक्रिया संतोष जी आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर पाकीज़ा फिल्म से ये गीत।

0: काफी स्कोप है उस मंडीदीप क्षेत्र में।
1: जी हाँ, इंटरेस्टिंग एरिया है सर। हम 6 से 2 ड्यूटी भी कर लेते हैं। अच्छी कंपनी है
0: अच्छा
1: वहाँ
0: जी,
1: पे, जैसे मैंगो का जूस पैकिंग वैकिंग होती है, तो उधर 8 घंटे ड्यूटी, बाकी इधर हम ओला रेपिडो गाड़ी भी चला लेते हैं
0: क्या
1: काम में।
0: बात है, यानी आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं मेरे जी।
1: जी सर, FM भी सुनना पसंद करते हैं सर।
0: तो आप ये गाड़ी में ही आप FM सुनते हैं?
1: जी हाँ, जैसे टाइम निकल जाता सर, हेलो फरमाइश वगैरह, फोनिंग टाइम, ये तो जरूर मिस ही नहीं करते हैं सर।
0: क्या बात है वीरे जी, आप कर्म भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं और आकाशवाणी के साथ में जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और विनय जी, आप अपने दोस्तों और मित्रों के भी नाम लेना चाहते हैं?
1: जी केवल घर वाले के नाम लेंगे सर, रीना
0: बिल्कुल
1: व्यंजन सिंह।
0: जी। विनय जी, अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये
1: नमस्ते।
0: गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हम विनय मंडेदीप से बोल रहे हैं सर।
0: स्वागत है विनय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: सर चलते चलते मूवी का ये चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।
0: जी और क्या करते हैं आप विनय जी?
1: सर ओला रेपिडो अभी गाड़ी इस समय चला रहे हैं सर।
0: अच्छा जी, आप सवारी ऑटो चलाते हैं
1: जी।
0: और विनय जी मंडीदीप क्योंकि भोपाल और बैतूल के बीच में पड़ता है और इंडस्ट्रीज एरिया है, तो

0: दोस्तों, अब घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था अशोक सोनारे का। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी आकाशवाणी केंद्र बैतूल की। तो दीजिए कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल से अपने रेडियो दोस्त संदेश खातकर को इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो एफएम बैतूल,
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 10:55 होने को है। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से मन की बात आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
3: आकाशवाणी है। श्रीमद भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि

0: दूर जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भाई आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूं अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तो बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा। कि इंडियंस भी भाग सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम ऑल टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर एनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं एनिमेश को बता रहा था भी एनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी

अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात ना होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी बना शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यही से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बनाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें
21

0: इस बड़ी और तीन छोटी ताम्रपट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्रपट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के महार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रीय मानांकना

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार है अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे देहरा इस फिल्म का गाना। गीतकार है पंछी जालुनवी और संगीतकार है आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनिधि चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टंप्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार है समीर और संगीतकार है प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी है केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रोड़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आवाजें के अलिशा चिनोई और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियू।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूट कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के लूट कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी ठीक, उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है?

वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक, बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुनीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपने पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ पीढ़ियां अस्थायी होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं। जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है, जब कोई अपना रूठ कर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरह है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछुओं को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब, देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के वर्ग संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा।

शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रही हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है, तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने, लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं, ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से ही चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से ही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भूला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी

रात को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जीतू, हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं न कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुनिए सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रही है क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसी उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते हैं उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार है, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कहीं नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे, ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसे ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारे रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे के दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए, लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी

वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धक्का बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल है और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, तू जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जा,
1: जाता है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, यह अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को यह दर्द का उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है।

जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। लूट कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई। तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा, मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच

सुना कि दर्द के लिए एक आवाज होती है, वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी वो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की। फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी की बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। मैं एक श्रोता लिखता हूँ कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूँ और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ विविध भारती को। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण में नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू

तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।

0: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में है शेख महजिदीन अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल भूमेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सैनी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मारा चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर ट्रूलो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांगिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान।

0: उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 में चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी।

0: नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब उल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया से दोबारा सुनिए, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

Thank you.

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार है जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: चाहेगी।
1: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड न भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें।
2: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनेद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
5: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप कैसे निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

फिल्म बॉबी के दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोर में नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा

मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे

0: व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सके। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनिता में, गीत रचना राजा मेहदी लखन की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनिता में।

0: रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों रेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना
2: पहुंचा। तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले दोनों में भी ऊटी जाने का प्रोग्राम
1: बना। नो, ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बना तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। कोई प्रोग्राम नहीं बना।
1: तो डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना। हाँ,

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस,

0: लिजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: ठीक है, व्हाट इज दिस, क्या है?

0: मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही।

0: कौन कहता है?
1: मुझे ऐसा लगता है।
0: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
1: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
0: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
1: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
0: पहले उसे दवा दी जा रही है।
1: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
0: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
1: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
0: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया गया?
1: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
0: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
1: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
0: इच्छा नहीं है
1: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
0: कुछ भी मतलब निकाल लो।
1: अपने बहुत बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
0: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
1: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
0: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का बात नहीं कर सकता।
1: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
0: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
1: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
0: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास। भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप। रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी,
2: जी
0: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
2: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
0: ऐसा क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
3: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
0: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
2: एक साथ घूमने लगेंगे?
0: हाँ?
2: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
0: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है।
2: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
3: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
3: बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
2: ओके, अच्छा
0: बाय डॉक्टर।
3: बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
0: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
0: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
0: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
0: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
0: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
0: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
0: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
0: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
0: माया घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी के कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो।

0: लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष।

0: मुझे क्षमा करना बहनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बहनी। कौन कौन
1: डेजी? एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: डेजी तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तभी हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारे चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है देजी? क्या हुआ? बोलो देजी, बोलो क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं बेजी नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता
0: हूँ। डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ। मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा

0: सुनने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस।
2: डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
3: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा जल बसाना
3: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को इस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा?

0: आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
1: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
1: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
1: यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
1: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
1: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका
1: ना। डॉक्टर डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नॉट ए मेयर डेथ, इट वॉज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो, क्यों डॉक्टर?
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़ होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज यह सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा
1: डॉक्टर,
0: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्या भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन से चुकानी होती है। अरे डेजी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें

0: कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें
0: डेजी, जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसे किताब तोड़ दिया। मैं नया किताब ले आऊंगा दीदी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो दीदी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी कराएंगे। हाँ, ऊटी में जरूर चलेंगे, चलेंगे है?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: देसी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने वर्ग की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ है।
0: डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल के मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
0: टूट रही है डेजी, डेजी, तुमने तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है डेजी।
1: नहीं लड़ो, नहीं तुम लड़ो, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याली तुमने बदल दी है? ये क्या हो गया? ये काली कॉफी तो मेरी थी, तुमने रोका कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसी हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी।

0: किन लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएगा कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी,
2: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
1: जी,
2: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
1: जी।
2: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
1: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
2: जी।
1: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
2: मैं तो अच्छी हूँ
1: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा।
2: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
1: जी,
2: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी।
2: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: ही
2: हैं। तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा।
2: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
1: जी, बिल्कुल
2: 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
1: जी,
2: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई

0: थे वो उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी।
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके मैनेजर वो वहां पर थे
1: जी,
0: रावल जी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। ठीक, कौन सी सन की बात है और किस फिल्म के लिए?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार
1: की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल ना। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा।

0: विपुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी,
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं
0: थी। जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की

0: शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी, और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं ना, तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ, एक्चुअली वो भी आग थी। लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी,
0: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी की द्वारा।
0: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने

0: बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, इनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी, मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग। फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की तरह
1: जी। मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से, तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: बिल्कुल
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर देखा।
1: जी जी।
0: तो मिथुन जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश।

0: लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला। कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: एक प्रेरित हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा।
0: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
1: हाँ जी।
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी
1: जी,
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी।
1: इसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ और वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी। तो मित्र जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है
1: जी,
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

Mom.

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटे दुनिया वालों, हिंदू

0: नुकसान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते शब्दों की जो जंग,
0: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हरेक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों की रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात।
0: सही बात है,
1: है ना? और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
1: कोई गाना जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना।

0: पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी।
0: तो भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई

0: लोकगीत बहुत लोग गाते थे
1: जी,
0: तो भील जाति के लोग भी उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
1: जी,
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
1: जी,
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल,
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं।
1: बिल्कुल, वो दर्शन
0: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
1: दर्पण में
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज है उनके पास,
0: हाँ,
1: आज भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए,
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: और हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था शुरू से। प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत है जिसे देखते रहे, संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी ने या मुखड़ा देख लिए दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहिबचा गाना आला साहिबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्वा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ तो मुझे लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे बुलाती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: कि
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मिटे न रे भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
0: लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले।

दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस से गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आईना होती है दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा। तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना, किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ अदाएं तो आपके बस में है, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

सो हेलो, नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों. एफएम वेव्स 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर के ऐप पर आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी. और दोस्तों, युववाणी में आज आपके साथ है आप ही का अपना रेडियो फ्रेंड कार्तिक. तो दोस्तों, कैसी है आपकी शाम? उम्मीद है पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप सभी पूरी तरह तैयार होंगे इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए. दोस्तों, आज का सफर होने वाला है बिल्कुल खास, क्योंकि सबसे पहले होगी हमारी आज की बात. दोस्तों, आज की बात में हम बात करेंगे तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जानेंगे कि कैसे युवा अपनी जागरूकता और सक्रिय भूमिका से समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकते हैं. और दोस्तों, इसके बाद बारी आएगी हमारे खास सेगमेंट एक फनकार की, जहां हम जानेंगे राजकुमार राव के साधारण से असाधारण बनने की प्रेरणादायक कहानी, कैसे संघर्ष, धैर्य और मेहनत के बल पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान को बनाया. और फिर प्रस्तुत होगा हमारा प्रेरणादायक स्तंभ सक्सेस टिप्स, जिसमें आज का विषय है मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करें. जानेंगे कि तकनीक का समझदारी से उपयोग कैसे हमारी सफलता और व्यक्तित्व विकास में सहायक बन सकता है. और हाँ दोस्तों, युववाणी है तो म्यूजिकल तड़का भी जरूरी है, इसलिए बीच बीच में आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गीत, जो इस शाम को और भी सुरीला बना देंगे. साथ ही दोस्तों, कल के कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक भी आपको आज के कार्यक्रम के अंत में मिलेगी. तो दोस्तों, कुछ इस तरह सजेगी हमारी आज की एक खूबसूरत शाम. और अब वक्त है सफर को शुरू करने का एक बढ़िया से फिल्मी गीत के साथ. तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुनवाते हैं जोगीरा सारारा फिल्म से मीत ब्रोस की आवाजों में ये प्यारा सा गीत. सुनिए बढ़िया से और गुनगुनाइए, मुस्कुराइए. हम जल्दी लौटेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

सो वेलकम बैक दोस्तों। और अब बारी है हमारी आज की बात की। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारे समाज और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारा आज का विषय है तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी। तंबाकू आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। दोस्तों ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कई बार इसके दुष्प्रभाव तुरंत दिखाई भी नहीं देते, लेकिन समय के साथ ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि तंबाकू के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। दोस्तों युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होती है। इसी समय व्यक्ति अपनी आदतें और जीवन शैली का चुनाव करता है। अगर इस उम्र में सही निर्णय लिया जाए तो भविष्य स्वस्थ और बेहतर बन सकता है। इसलिए युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार युवा साथियों के दबाव में आकर या दिखावे के लिए तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक सामान्य बात है, लेकिन ये छोटी शुरुआत बाद में लत का रूप ले सकती है। दोस्तों इसलिए शुरुआत से ही सावधान रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तंबाकू का सेवन केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हृदय, मुंह और पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये कई प्रकार के कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसके कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। दोस्तों स्वस्थ जीवन के लिए इससे दूरी बहुत जरूरी है। आज के युवा जागरूक और तकनीक से जुड़े हुए हैं। वे समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने की क्षमता रखते हैं। अगर युवा तंबाकू विरोधी अभियानों से जुड़े तो इसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंच सकता है। उनकी भागीदारी बदलाव की एक मजबूत नींव बन सकती है। दोस्तों स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं तंबाकू के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और दोस्तों युवा रैलियां, कार्यशाला और अभियानों में भाग लेकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में बता सकते हैं। इससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दोस्तों आप सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं और आप सभी के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच है। इस मंच का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तंबाकू के खिलाफ संदेश और जागरूकता अभियान लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को सही दिशा भी मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसे परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलना चाहिए। प्रोत्साहन और सकारात्मक माहौल किसी भी बुरी आदत को छोड़ने में बहुत हद तक मदद करता है। युवाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से युवाओं का योगदान इस अभियान को और अधिक प्रभावी बना सकता है, क्योंकि युवा ही देश का असली भविष्य है। दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली अपनाना तंबाकू से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। खेल, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है। ये आदतें आत्मविश्वास भी बढ़ाती है और जीवन को बेहतर बनाती है। तंबाकू पर खर्च होने वाला पैसा व्यक्ति के विकास और जरूरतों में लगाया जा सकता है। इससे आर्थिक बचत भी होती है और परिवार की खुशहाली भी बनी रहती है। ये समझ युवाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज कई युवा स्वयं तंबाकू छोड़कर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। उनकी कहानियां ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प से किसी भी आदत को छोड़ा जा सकता है। बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तंबाकू छोड़ने का निर्णय स्वयं के साथ साथ परिवार के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी आता है। ये एक सकारात्मक कदम है। हमें अपने आसपास के लोगों को भी तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। जागरूकता ही बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती है। यही सामाजिक जिम्मेदारी भी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमें ये सब चीजें याद इसीलिए आती है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान और मजबूत बन सकता है। जब युवा किसी अच्छे उद्देश्य से जुड़ते हैं तो समाज में बदलाव की नई लहर आती है। उनकी ऊर्जा और सोच कई लोगों को प्रेरित कर सकती है। यही शक्ति तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण कर सकता है। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि स्वयं भी तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, तंबाकू से दूरी और जागरूकता ही एक स्वस्थ समाज की पहचान है। और ये तो रही हमारी आज की बात। और कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो चलिए आप लोग को सुनवाते हैं एक और म्यूजिकल ट्रैक आप ही के अपने रेडियो सेट और न्यूज़ ऑन AIR के ऐप पर।

कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब समय हो गया है हमारे आज के विशेष सेगमेंट एक फनकार का, जहां हम बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के दम पर एक अलग ही मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों, आज के हमारे फनकार है राजकुमार राव, जिनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने बड़े हो और मेहनत सच्ची हो तो साधारण शुरुआत भी असाधारण मंजिल तक पहुंच सकती है। दोस्तों, राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को गुरुग्राम में हुआ था। वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी और यही रुचि आगे चलकर उनका जुनून भी बन गई। स्कूल के दिनों में वे नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। मंच पर प्रदर्शन करने में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। यही से उनके अभिनय के सपनों ने आकार लेना शुरू किया। उन्होंने तय कर लिया था कि अभिनय ही उनका भविष्य होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभिनय की पढ़ाई भी की। यहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा। उन्होंने खुद को लगातार निखारने का प्रयास किया। यही प्रशिक्षण आगे उनके बहुत काम आया। दोस्तों, अभिनय की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार राव मुंबई पहुंचे, लेकिन शुरुआती दौर में उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। कई ऑडिशंस देने के बाद भी सफलता उनसे काफी दूर थी। मुंबई में उन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। साल 2010 में उन्हें फिल्म एलएसजी में काम करने का अवसर मिला। ये फिल्म उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लोगों ने उनके अभिनय पर ध्यान देना शुरू किया। एक नए प्रतिभाशाली कलाकार का उदय हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग प्रकार के किरदार को निभाया। वे कभी एक ही छवि में बंद कर नहीं रहे। हर फिल्म में कुछ नया करने का प्रयास किया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता बनी। फिल्म काई पोछे ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। ये फिल्म उनके करियर की बड़ी सफलता साबित हुई। इसके बाद उनके लिए नए रास्ते खुलते चले गए। फिल्म शाहिद में उन्होंने वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये उनकी प्रतिभा की बहुत बड़ी पहचान थी। राजकुमार राव ने हमेशा विषय प्रधान फिल्मों को महत्व दिया है। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल बड़े बजट की फिल्मों से नहीं मिलती। अच्छी कहानी और दमदार अभिनय भी दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। उनका सफर इसका शानदार एग्जाम्पल है। वे नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा बने। फिल्में जैसे न्यूटन, बरेली की बर्फी और स्त्री ने उनकी लोकप्रियता को चार

दिया है। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल बड़े बजट की फिल्मों से नहीं मिलती, अच्छी कहानी और दमदार अभिनय भी दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। उनका सफर इसका शानदार एग्जाम्पल है। वे नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा बने। फिल्में जैसे न्यूटन, बरेली की बर्फी और स्त्री ने उनकी लोकप्रियता को चार चांद लगा दिए। हर फिल्म में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। कॉमेडी, रोमांस, सामाजिक विषय या गंभीर भूमिका, उन्होंने हर शैली में अपनी प्रतिभा साबित की। वे उन कलाकारों में शामिल हैं जो किरदार को जीने की कोशिश करते हैं, इसी कारण दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी सादगी और जमीन से जुड़ा स्वभाव भी है। सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने विनम्रता को नहीं छोड़ा, ये गुण उन्हें और भी खास बनाता है। राजकुमार राव का जीवन युवाओं को सिखाता है कि सपनों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली सीढ़ियां है। संघर्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और ये पहचान मेहनत की बदौलत मिली है। दोस्तों, राजकुमार राव की कहानी हमें बताती है कि साधारण परिवार से निकलकर भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। जरूरत है केवल दृढ़ निश्चय, लगन और विश्वास की। यही उनकी प्रेरणादायक यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। तो साथियों, ये थी कहानी राजकुमार राव की, एक ऐसे कलाकार की जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। और कार्यक्रम में अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत आपके अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे प्रेरणादायक स्तंभ सक्सेस टिप्स का, जहां हम बात करते हैं ऐसी आदतों और विचारों की जो जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का विषय है मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करें। आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। संचार, शिक्षा और जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसने जीवन को काफी आसान भी बनाया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है। आज हम पल भर में किसी से भी जुड़ सकते हैं, नई जानकारियां और अवसर भी यहाँ उपलब्ध है। लेकिन इसका गलत उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। कई बार लोग बिना जरूरत घंटों मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, जिसका असर साफ पढ़ाई, काम और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सफल लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं, वे तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। समय प्रबंधन सफलता की असली कुंजी है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस ध्यान भंग करते हैं। इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एकाग्रता सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर बात वास्तविक नहीं होती। कई बार लोग केवल अपनी उपलब्धियां साझा करते हैं, जिससे दूसरों में तुलना की भावना पैदा हो सकती है। हमें अपनी वास्तविकता और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुलना की बजाय आत्मविकास महत्वपूर्ण है। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीखने के लिए भी किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज, शैक्षणिक वीडियोस और उपयोगी सामग्री उपलब्ध है। यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये ज्ञान का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तकनीक का सकारात्मक उपयोग सफलता दिला सकता है। हमें दिन का एक निश्चित समय सोशल मीडिया के लिए तय करना चाहिए। इससे अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। दोस्तों, अनुशासन डिजिटल जीवन में भी आवश्यक है। यही संतुलन सफलता की ओर ले जाता है। रात में सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। अच्छी नींद बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है, इसलिए डिजिटल अनुशासन अपनाना चाहिए। परिवार और मित्रों के साथ बिताया गया समय किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से अधिक मूल्यवान होता है। हमें वास्तविक संबंधों को महत्व देना चाहिए। मानवीय जुड़ाव जीवन को संतुलित बनाता है और यही खुशहाल जीवन का एक सफल पहचान है। कई युवा अपने लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन मोबाइल की वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। यदि हम अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें तो समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तकनीक को अपना सहयोगी बनाए, मालिक नहीं, क्योंकि संतुलित उपयोग ही सफलता और खुशहाल जीवन की पहचान है। यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। तो साथियों, मोबाइल और सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका संतुलित उपयोग ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इसी संदेश के साथ हमारी सक्सेस टिप्स में आज इतना ही, और आपके लिए एक और प्यारा सा फिल्मी गीत आपके ही अपने रेडियो सेट और न्यूज़ ऑन AIR के ऐप पर।

तो दोस्तों, इस तरह आपने सुनी आज के युववाणी में खास बातें और सुरीले गीत। और अब समय है कल के कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक का। कल शाम 5:30 बजे युववाणी आप सुन सकेंगे अपने निर्धारित समय पर। और कल की आज की बात में हम बात करेंगे अपने माता पिता से नियमित संवाद करते रहे इस विषय पर। जानेंगे कि व्यस्त जीवन के बीच परिवार से जुड़ाव और संवाद हमारे रिश्तों को कैसे मजबूत बनाता है। दोस्तों, इसके बाद होगा हमारा जागरूकता से भरपूर सेगमेंट साइबर जगत, जिसमें चर्चा होगी नकली वीडियो और आवाज की पहचान कैसे करें इस विषय पर, यानी डिजिटल दौर में बढ़ती डीप फेक तकनीक से बचाव के उपाय और साइबर सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। फिर होगा हमारा विशेष सेगमेंट इनसे मिलिए, जहां आप रूबरू होंगे एक खास मेहमान से और जानेंगे उनके जीवन अनुभवों और तथा उपलब्धियों के बारे में। और दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान सुनने मिलेंगे आपको आपके ही पसंद के फिल्मी गीत, जो इस शाम को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम आकर्षणों के साथ आपको कल फिर से बुलाएंगे आप ही के अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज के लिए अपने रेडियो फ्रेंड कार्तिक को दीजिए अनुमति। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और युववाणी सुनते रहिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

आप सुन रहे थे युवाओं के लिए मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर, छावल सिंह उइके, मदन मोहन शुक्ला और साथियों की आवाज में। 6:30 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे 6:50 पर। 7:10 पर वक्त होगा समाचार संध्या का, जो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र में प्रसारित किया जाएगा। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। सामयिक कृषि चर्चा में बात होगी तोरई एक सब्जी, वार्ता भेंट वार्ता श्रृंखला बातें खेती किसानी की, होंगे कुछ लोकगीत, बाजार भाव और मौसम का हाल। कार्यक्रम शीर्षक संगीत होगा रात 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। गीत और संगीत का कार्यक्रम साज और आवाज आप सुनेंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:00 आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का, जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। एक ही फिल्म पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे रात 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे जगजीत सिंह। रात 11:00 वक्त होगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर रोज की तरह होगा सभा का समापन। श्रोताओं, ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह यानी 1 जून 2026 की सुबह का आगाज होगा कार्यक्रम वंदे मातरम के साथ 5:55 पर। भक्तिधारा का कार्यक्रम होगा 6:05 पर। कार्यक्रम चिंतन आप सुनेंगे 6:30 पर। श्री रामचरित मानस गान।

इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:35 पर सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। 6:45 पर वक्त होगा कार्यक्रम लोक रंजनी का, आवाज होगी माधुरी शर्मा और साथियों की। हिंदी में समाचार होंगे 7 बजे, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 7:10 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के झरोके से। कार्यक्रम सुबह सवेरे होगा 7:50 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त होगा 8:30 पर। सुबह 9 बजे आप आनंद लेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर वक्त होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत का। महिला बहनों का कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा परिवार में संवाद और बच्चों का पोषण। मुलाकात में कार्यरत माता की चुनौतियां, इस विषय पर महिला बैंक अधिकारी या शिक्षिका से बातचीत। इसके अलावा हेल्थ टिप्स, किचन टिप्स, गर्मी में शरीर को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं, होंगे कुछ फिल्मी गीत और कल के आकर्षण। सुबह 11 बजे से 5:30 तक आप आनंद लेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सायंकालीन सभा का आरंभ होगा युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी के साथ शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने माता पिता से नियमित संवाद करते रहें, साइबर जगत में नकली वीडियो और आवाज की पहचान कैसे करें। इसके अतिरिक्त इनसे मिलिए, होंगे कुछ फिल्मी गीत और कल के आकर्षण। कार्यक्रम गोधली भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:05 पर नरेंद्र चंचल की आवाज में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 6:30 पर। गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे 6:50 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर समय होगा किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा विश्व दुग्ध दिवस। सामूहिक कृषि चर्चा में हम जानेंगे जल संरक्षण से ही कृषि कार्य संभव है। वार्ता भेंट वार्ता श्रृंखला बातें खेती किसानी की, बाजार भाव और मौसम का हाल। कुछ बातें कुछ गीत, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:30 पर होगा कार्यक्रम हमारा बैतूल। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे से 10 बजे तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपके मीत ये गीत, इस कार्यक्रम का वक्त होगा रात 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, फनकार होंगे गुलाम अली। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात 11:05 पर और 11:05 पर। रात 11:10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष गरीब कल्याण। और 11:45 पर होगा रोज की तरह सभा का समापन। श्रोताओं, ये थे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण में। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 होने को है। प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर, आवाज है छावल सिंह उइके की।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आवाज है छावल सिंह उइके की।

कार्यक्रम माटी के स्वर में अब आइए सुनते हैं मदन मोहन शुक्ला और साथियों का गाया हुआ ये प्यारा सा लोकगीत।

आकाशवाणी बैतूल पर जारी है कार्यक्रम माटी के सुर, और आइए अब सुनते हैं ये लोकगीत आवाज मदन मोहन शुक्ला और साथियों की।

इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आशिकी 2 से। आवाज है मुस्तफा नाहिद की, संगीत जीत गांगुली का और शब्द रचना संजय मासूम की।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है कार्तिक महालक्ष्मी और अंतरा मित्रा का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और फिल्म का नाम एक्शन रिप्ले।

आकाशवाणी के बैतूल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब सुनते हैं समीर का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत। आवाज हिमेश रेशमिया और अविका चौधरी की, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने, और फिल्म का नाम है आपका सुरूर।

कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं फिल्म चमेली का ये प्यारा सा गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है सुनिधि चौहान ने। शब्द रचना इरशाद कामिल की और संगीत संदेश शांडिल्य का।

इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है सोनू निगम ने, संगीत राजू सिंह का।

आकाशवाणी के बैतूल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। लीजिए पेश है ये प्यारी सी गजल आवाज चंदन दास की। रचना इब्राहिम अश्क की।

कार्यक्रम के अंत में पेश है प्रहलाद शिंदे की आवाज में ये प्यारी सी कव्वाली।

इस गैर फिल्मी कवाली के साथ में कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: मिनट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है, सुन फटे फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ नया नोट मिलेगा?
1: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आज ये कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनीय विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
4: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को, एक बौद्ध विहार को

0: दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनि विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनि विद्यालय अकोदिया, मीर भोज सांदीपनि विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनि विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यो का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
3: ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क तक पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, कोई शौचालय नगरी निकाय जहां गवर्नमेंट किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कनेक्शन 10 लाख लीटर प्रति उसको बढ़ाकर के 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ाकर के देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का इसको 20% तक ले जाकर हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ा दें।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण

किया जा रहा श्रेष्ठम स्तर की दुष्मता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिन से कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सातवें विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुनने वाले हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों और जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, आप सभी को अपने दोस्त दिलीप सिकरवार का हाथ जोड़कर राम राम पहुंचे। भैया, आज महीने का जो है आखिरी तारीख है और कल से नया महीना लग जाएगा, जून महीना है ना, तो आपको भी नया कुछ काम करना होगा अपनी खेती बाड़ी के हिसाब से। सबसे पहली बात ये है कि हमें महीना बदलता है, उस हिसाब से कृषि कार्यमाला भी बनाकर काम करना पड़ता है। मतलब ये कि हमारे जो बैतूल जिले के किसान भाई हैं उनकी बात करें तो सोयाबीन, कपास और दूसरी फसलें लेते हैं। अब देखिए, कल ही से मौसम में परिवर्तन आ गया है, आपने भी देखा होगा है ना, जो गर्मी तेजी से पड़ रही थी उसमें अचानक परिवर्तन आया और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। इस हिसाब से हमें काम भी व्यवस्थित करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि खेत की तैयारी हमको करना पड़ेगा और उपज कोई भी लें, लेकिन खेत तो बनाना ही होगा। खेत बना लेना बेहतर होता है, गहरी जुताई कर लेना चाहिए, गोबर की खाद अभी से डाल दें ताकि ये होगा कि जब बारिश होगी तो वो अच्छी तरह से सड़ जाएगी, खेत की मिट्टी के लिए बढ़िया हो जाएगी है ना। नालियां जो है इसको साफ कर लेना चाहिए, ऐसा इसलिए कि खेत के चारों तरफ जो पानी की निकासी है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। एक सामान्य से चर्चा हमने करी, अगले महीने के लिए, अगले महीने के कल से

आपको काम शुरू करना उस हिसाब से। आज जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। अब गंभीर विषय तो है ही कि तंबाकू नहीं खाने के लिए भी हमको चर्चा करना पड़ता है, और खाते क्यों हैं ये समस्या पर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके नुकसान पर हम बात करें, तंबाकू खाने के नुकसान पर हम बात करें तो मुंह और इनके दांत का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, दिल में भी दिक्कत आती है, हार्ट अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती है ना, पेट में अल्सर, एसिडिटी, खाने की नली का कैंसर, दिमाग की बात करें तो लकवा, स्ट्रोक जो होता है ना, याददाश्त कमजोर होना, और प्रजनन संबंधी समस्या भी आती है। बहुत सारे नुकसान है तंबाकू खाने के। फायदे पता नहीं क्यों इस बात को खाने वाले समझ नहीं पा रहे कि इसका फायदा तो है ही नहीं कुछ, थोड़ा सा एक नशे जैसा आपको लगता होगा। जो खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, आपसे मतलब ये नहीं कि हमारे सारे किसान भाई, सभी किसान भाइयों के लिए हमने ये बात करी, मतलब ये है कि उनके लिए यहाँ जिक्र हो रहा है इस बात का कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है इसको मनाने के पीछे कारण है कि तंबाकू की जितनी भी बुराइयां हैं वो आपको बता दिए जाए। अब छोटे से खर्चे में, छोटे खर्चा है बीमारी के हिसाब से, जो बीमारी आती है शरीर में वो बहुत बड़ी होती है, और उस पर जो अपने परिवार को नुकसान होता है, जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। अब परिवार का कोई सदस्य इस तंबाकू के कारण बीमार होता है तो सोचिए जो दूसरे सदस्य हैं उन पर क्या बीतती है ना। तो बहुत सारी समस्या हैं इस तंबाकू की वजह से, जो हमने मोटी मोटी बताई, पूरे शरीर को प्रभावित करती है, दिमाग से लेकर मुंह से लेकर पूरा आपके जो है प्रजनन तक सारी समस्या इसमें आती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको आज ही से मना कर दें, आज का दिन बीत गया लेकिन कल से शुरुआत करें तो अच्छी शुरुआत करें कि हमको तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाना है। अब देखिए कारण तो बहुत सारे होते हैं कि हम क्यों खाते हैं, है ना, पर ये बहानेबाजी हो गई, क्योंकि जहर तो जहर है, जहर को क्या हम किसी भी रूप में खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। भले वो कोई बोले कि उसमें फायदा है खा लो, नहीं खाएगा कोई, कोई बोले कि आपको पैसे देंगे जहर खा लो, नहीं खाएगा कोई, फिर हम तंबाकू ऐसे को खाते हैं। आपको पता होगा कि तंबाकू में 7000 से ज्यादा केमिकल होते हैं जो शरीर को बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से नुकसान देते हैं। तो कोशिश करिए कि हम ऐसी जानलेवा तंबाकू से तौबा करें, दूर रहें, और ऐसा नहीं कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान ही नुकसान है इसके। बस यह है कि आदत लग जाती है, और आदत को छोड़ना भी ऐसा बड़ी बात नहीं कि हम छोड़ नहीं पाते। अब यदि आती है हम खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी तंबाकू चबा ली, तो उसके बजाय आप तंबाकू ही क्यों, बहुत सारी चीजें भैया खाने की, सौंफ रख लिए पास में, सौंफ से अच्छा भी रहता है, सेहत भी बनेगी बढ़िया, पेट भी साफ रहेगा, लौंग खा लिया आपने। यदि आपको कुछ चाहिए ही है उस समय कुछ खाने को तो तंबाकू ही क्यों, है ना। तंबाकू मोटी मोटी बात समझ लीजिए, तंबाकू जो है ये धीमा जहर है। इसमें क्या होता है, पैसा भी गया आपका, और एक जो चार लोग खड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे यार उसको मत करो क्योंकि वो तंबाकू खाएगा फिर यहां वहां थूकेगा, तो गंदगी भी फैलाता है। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि हर साल 31 मई को आज ही के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में, ठीक है। तंबाकू से जो मौतें हुई थी, जो बीमारी हुई थी, जो होती हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये सारी चीजें चालू की गई थी। और आज भी एक ये बड़ी समस्या है कि तंबाकू से हमें दूर रहने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन कोशिश कीजिए आप तंबाकू से दूर रहेंगे तो पूरा परिवार जो है वो सुखी रहेगा, है ना। तो हमारे जितने भी श्रोता हैं हम उनसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आज के दिन आप संकल्प ले लीजिए कि हमें तंबाकू को हाथ

भी नहीं लगाना है। ये सच्चाई है कि तंबाकू की वजह से हर साल बड़ी संख्या में मौतें होती हैं और उससे ज्यादा तो लोग बीमार रहते ही हैं, आपने देखा है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब रुकते हैं और सुनते हैं आदर्श रामायण मंडल नाहिया की टीम ने जो ये प्यारा सा राम भजन गाया है, आइए सुनते हैं।

हमारे किसान भाई सुन रहे थे, आदर्श रामायण मंडल नहीं है कि टीम के साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से राम जी का भजन गाया और इसको आपने सुना। अब एक और सब्जी के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, तोरई। तोरई जो है तो साधारण ही हमारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसका जो फायदा है, इसका जो लाभ है, सेहत के हिसाब से बहुत खास मानी जाती है। और गर्मी जो अभी चली रही है, बरसात और गर्मी में ये रामबाण इसको कहते हैं। पहली बात तो मोटी मोटी ये करें कि वजन घटाने के लिए बहुत बढ़िया है तोरई, पेट साफ करने के लिए, जो आमतौर पर आजकल समस्या होती है कि कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो इस हिसाब से तोरई का जो सेवन करते हैं, तोरई की जो सब्जी खाते हैं, उनको फायदा मिलता है। इसके अलावा जो बीपी की समस्या आजकल ये मान के चलिए कि आम हो चली है, तो बीपी शुगर में भी ये फायदा करती है तोरई। शरीर को ठंडा रखती है, जैसे हमने बताया कि गर्मी में ये फायदा करती है इस हिसाब से, और त्वचा खून के लिए बहुत बढ़िया होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं तोरई की सब्जी के बारे में। तो जैसे हमने बताया कि वजन घटाने में कारगर है, तो 100 ग्राम तोरई की सब्जी यदि खाते हैं तो इसमें केवल 20% जो है वो कैलोरी होगी, 20 ग्राम के आसपास, और 90% पानी होता है। पानी की मात्रा इसमें बहुत होती है जो शरीर के लिए उपयोगी होती है, इसीलिए गर्मी में ये रामबाण मानी जाती है। इससे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें पेट भर जाता है और वजन जो है नहीं बढ़ पाता है ना। तो जो आमतौर पर वेट को लेके, वजन को लेके चिंतित रहते हैं, उनके लिए तोरई की सब्जी बहुत बढ़िया है। दूसरी बात ये आती है कि पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज रहती है, ऐसी समस्या है, तो ऐसे में ये फाइबर और पानी दोनों इसमें मिल जाते हैं आपको। पुरानी कब्ज हो, एसिडिटी हो, गैस, इसमें आपको ये तोरई की सब्जी बहुत फायदा करती है, हल्की होती है और अच्छी होती है। शुगर बीपी की बात हमने जैसे करी आपको, तो चूंकि इसके फायदे हमने बताए, तो उस हिसाब से इन बीमारियों में भी ये नियंत्रण करती है, शरीर को ठंडा रखती है। तासीर ठंडी है तुरई की, गर्मी में शरीर का तापमान बनाकर रखती है। किसी तरह की जलन हो गई या मुंह के जो छाले होते हैं ना इस मौसम में गर्मी के कारण, उसमें भी आपको तुरई जो है ये फायदा पहुंचाती है। और एक और बात जो जानकर बताते हैं कि पीलिया,

0: किसी को समस्या है तो उसमें भी तोरई का जो जूस होता है इसको पिलाते हैं, ताकि ये लीवर को साफ करती है। स्किन और खून के लिए जैसा बताया कि इसमें विटामिन सी होता है, जिंक जो है ये खून साफ करता है, फोड़े फुंसी नहीं होते, आयरन भी बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है जिसकी वजह से चेहरे पर ग्लो आता, चमक आता है। जिनको कब्ज रहती है उन्हें तो इसका सेवन करना ही करना चाहिए। शुगर बीपी के यदि मरीज हैं उनको भी खाना चाहिए। फिर भी डॉक्टर से एक बार आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें ये सब्जी खाना चाहिए, अच्छा रहता पूछ लेना, ठीक ना, है ना। अगली बात आती वजन कम करने, जैसे हमने आपको बताया था शुरू में ही, उनके लिए भी बढ़िया है। और लू लगने की समस्या है तो भी तोरे की सब्जी को खाना बेहतर होता है। लेकिन कब ना खाएं, ये भी बात आती है कि कब ना खाएं, एक बड़ा सवाल ये होता है। तो इसमें यह है कि सर्दी जुकाम यदि हो गई है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी बताई गई है, सर्दी जुकाम है तो बिल्कुल नहीं खाएं, खांसी हो तो बिल्कुल नहीं खाएं, और रात में नहीं खाना है ना, दिन में आप खा सकते हैं। तो ये अच्छी सब्जी है, फायदेमंद सब्जी है और सस्ती सब्जी है। इस पर हमने बात करी तोरई के बारे में, और हमारे यहाँ पर अच्छी खासी मिल भी जाती है खेतों में, तो बढ़िया तोड़ के लाइए, और बहुत ज्यादा मसाला साला लगता नहीं है इसमें, साधारण सी जीरा नमक डाल के बढ़िया बना के और खाइए, बहुत फायदा करती है। चलिए अब कुछ बात करते हैं कमाई की और अपने शौक पूरे करने को। आज हम मिलवाते हैं आपको श्री प्रशांत गोठी से, नर्सरी चलाते हैं, और नर्सरी से किस तरीके से कमाई कर सकते हैं आप और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से।
1: साथियों, किस तरह से नर्सरी करके हमारे युवा साथी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपना जो हम बोलते हैं कि समय नहीं मिलता है उस समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर हमने बातचीत की है श्री प्रशांत गोठी से। आप करीब 12 सालों से नर्सरी को एक उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने नर्सरी डेवलप की है। हम चाहते हैं कि आप भी उनके विचार सुने और उसी तरह से आप भी जीवन की जो बगिया है उसको महकाएं। तो प्रशांत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: किस तरह से आपने नर्सरी को अपने जीवन में उतारा?
2: पहले तो शौक था पेड़ पौधों का, फिर धीरे धीरे उसको नर्सरी में कन्वर्ट किया। शुरू में 3-4 साल काफ़ी मेहनत लगी नर्सरी चलाने में। यहाँ लोगों में शौक नहीं था, लोगों में शौक पैदा किया। शौक पैदा करने के बाद फिर धीरे धीरे नर्सरी विस्तृत रूप में आगे बढ़ते गई।
1: ये सही कह रहे हैं आप कि जिस दौर में आपने नर्सरी को चलाना शुरू किया, संचालन शुरू किया, उस समय नर्सरी लोगों के समझ में नहीं आई होगी, फिर आपको काफी संघर्ष भी करना पड़ा होगा, क्या अनुभव रहे आपके?
2: पिछड़ा एरिया होने के कारण यहाँ लोगों का बगीचे में उतना शौक नहीं था। धीरे धीरे लोगों का बगीचे में शौक डेवलप किया। शौक तैयार करने के बाद फिर लोग धीरे धीरे नर्सरी की ओर ध्यान दिए, बगीचे को बढ़ाया, फलों के पौधे को लगाया, सब्जियों के रोपे को लगाया और धीरे धीरे उसको बढ़ाया।
1: किस तरह से नर्सरी आप डेवलप करते हैं?
2: नर्सरी में सभी चीज़ तैयार करते हैं, सब्जियों के रोप जिसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा फलों की वैरायटियां जिसमें आम, कलमी आम, आंवला, चीकू, लीची, कटहल, सभी चीज़, शोभायमान पौधे जो शो वाले पौधे होते हैं, उसके बाद फूलों की काफ़ी वैरायटियां हैं, गुलाब, सेवंती, डहलिया, बोगनविलिया, कुछ बेलाएं जो फूलों की बेलाएं होती हैं, शोभायमान बेलाएं होती है, कुछ बोनसाई, ये सब मिला के नर्सरी की शुरुआत की और उसको विस्तृत रूप से आगे बढ़ाया।
1: अच्छा प्रशांत भाई, एक चीज जो हम सुनते हैं कि पौधों को बच्चों की तरह पाला जाता है, ऐसे कहते आए हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, आपने क्या महसूस किया?
2: हाँ, पौधों को खूब ज़्यादा यानी अच्छे से देखरेख करना पड़ता है, बहुत अधिक पानी से बचाव करना पड़ता है, उसमें मिट्टी में खाद, रेत और दीमक से बचाव के लिए उसमें नीम खली वाला गार्डन मिक्सचर मिलाया जाता है। टाइमली उसमें जब जब बीमारियां आती हैं तो उसकी रोकथाम के लिए दवाइयों का स्प्रे, टॉनिक का स्प्रे किया जाता है, तो उससे फिर पौध में अच्छी ग्रोथ आती है। बहुत अधिक

0: पानी से बचाव के लिए पानी नहीं रुके ऐसी जगह में पौधों को लगाया जाता है, गमले में पानी की निकासी अच्छी हो इसलिए गमले उस तरीके से बनाए जाते हैं कि पानी नहीं रुके, और मिक्सचर अच्छी मात्रा में बनाएं, मिट्टी में गोबर खाद रेत और ग्रोथ के लिए गार्डन मिक्सचर डालें तो उससे पौधे में फिर ग्रोथ अच्छी आती है।
1: जैसा भी आपने बताया कि बीमारियां कुछ लगती हैं पौधों में, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
0: पौधे में सड़न रोग, गलन रोग, येलो मोजेक और उसके बाद रेड स्केल, ब्लैक राट, तने में जो बीमारी चलती है कीड़ों की और वायरस लगते हैं सड़न रोग, उसके लिए ये बीमारियां आती है पौधों में, तो उसका फिर उपचार किया जाता है, उसमें बाविस्टीन, मोनोक्रोटोफास, डाइमेथ और टॉनिक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले टॉनिक, इनका कॉम्बिनेशन मिला के स्प्रे करते हैं उसका।
1: अच्छा, समय समय पर क्या विशेषज्ञों की भी मदद आप लेते हैं?
0: हाँ, विशेषज्ञों की मदद लेते हैं, कृषि वैज्ञानिकों से राय लेते हैं और कृषि क्लिनिक जो है, कृषि चिकित्सा वाले हैं, उनसे समय समय पर पूछ के उसका निराकरण करते हैं।
1: मान लीजिए हमारा जो ग्रामीण श्रोता है वो नर्सरी डेवलपमेंट करना चाहता है, उसको आजीविका के बतौर चलाना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले?
0: उसे शुरू में सब्जियों के रोप की तैयारी करना पड़ेगा, सब्जियों के रोप की नर्सरी बनाना पड़ेगा। ग्रामीण में सब्जियों के रोप काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलते हैं, अच्छी किस्म के बीज का चुनाव करके बीज, सब्जियों के बीज की नर्सरी बनाएं, उसके बाद उसके एरिया में जो अच्छे पौधों की मांग है, जैसे फलदार में आपका आम है, आंवला है और बाकी पेड़ बिकते हैं, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बांस, नीलगिरी, सागौन, इनकी बहुतायत में मांग रहती है, तो उसको बनाएं और उसको बनाने के बाद उसको बेचें व्यापार में, और फूलों की खेती करें जिससे कि उनको और लाभ होगा, फूल का उत्पादन करें, गुलाब, सेवंती, गोल्डन राड, रजनीगंधा, उसको धीरे धीरे विस्तृत मात्रा में बढ़ाते जाएं और शहर में जो फूलों की दुकान है उसमें लाके वो दे तो उससे उनको लाभ मिलेगा।
1: नर्सरी का बड़ा फायदा यदि हम बात करें, आर्थिक रूप तो खैर है ही, आर्थिक पक्ष यदि मजबूत नहीं होगा तो वो फायदा नहीं कहेंगे हम, लेकिन नर्सरी में आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है और इसके अलावा यदि मानसिक तनाव में कोई है तो वो भी दूर होता है, ऐसा कहते हैं, आप क्या मानते हैं?
0: मानसिक तनाव भी दूर होता है, फ्रेशनेस आ जाती है पौधों में, फूल सुगंधित वैरायटियां हैं, फूलों की काफी अच्छी वैरायटियां हैं जिसको देखकर आदमी तनाव मुक्त हो जाता है और सारी बीमारियां भूल जाता है और काफी आनंद मिलता है उसको बगीचे में आकर, बगीचे में खुशबूदार वैरायटियों के बीच रहकर, फूलों को देखकर, फूलों की रौनक देखकर काफी आनंद आता है उसमें और बीमारियों को काफी दूर हो जाती है उससे।
1: अच्छा, एक चीज और शायद एक सवाल हमारे श्रोताओं के मन में उठ रहा होगा कि नर्सरी के काम में जुड़ने के लिए क्या किसी प्रकार का कोई कोर्स करना पड़ता है, कोई डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रकार का?
0: उसमें शौकिया प्रैक्टिकल करने में ज्यादा नॉलेज होता है और हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग वाले माली प्रशिक्षण भी देते हैं और वहाँ माली की ट्रेनिंग भी देते हैं, हम लोग भी नर्सरी में किसान अगर सीखना चाहें तो उनको 4-6 माह की ट्रेनिंग देते हैं, वो आकर सब चीज़ सीखें, रोपा कैसे बनाया जाता है, बडिंग कैसे होती है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, उसको सब चीज़ सिखाते हैं और उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर भी उनको 6 महीने का प्रशिक्षण देता है, उनसे भी प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
1: बैतूल का जो क्लाइमेट है ये कौन से पौधों के लिए सुटेबल कहेंगे हम?
0: बैतूल का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, फलदार वैरायटी में अधिकतम वैरायटियाँ यहाँ उत्पादित हो जाती है, आम, आंवला, चीकू, सीताफल, कटहल, अनार बहुत अच्छी मात्रा में तैयार हो जाता है, यहाँ का आबो हवा उसके हिसाब से बहुत अच्छी है, पपीता है और बाकी वैरायटियों में कुछ गर्म मसाले की वैरायटी भी लगा सकते हैं जैसे तेजपान है, औषधि पौधे की भी काफ़ी किस्में बैतूल ज़िले में हो जाती है, उसके अलावा वन की वैरायटियां जिसमें महुआ हो गया, अचार हो गया आपका और बाकी वैरायटियां हो गई, वो सभी बैतूल के क्लाइमेट में बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती हैं।
1: तो प्रशांत भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त, क्योंकि हम देख रहे थे आप

0: काफी लोगों को पौधों के बारे में जानकारी दे रहे थे और ऐसे समय में आपने हमसे बातचीत की, हमें अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: हमारे किसान भाई सुन रहे थे, नर्सरी से आप कमाई भी कर सकते हैं और अपने जो शौक हैं उसको पूरा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी थी, ये जानकारी आप तक पहुंचाई। श्री प्रशांत गोठी नर्सरी संचालक हैं, उनसे हमने बातचीत की थी और बहुत, हालांकि मेहनत तो देखिए किसी भी काम में लगती है, लेकिन आप यदि इसको कमाई के रूप में लेना चाहें तो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ शौक हैं अपने घर में ही, कुछ ऐसा बगीचा तैयार करना है फूलों का सब्जियों का, तो उस तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। एक जानकारी थी हमने आपको अभी दी, उम्मीद है आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। गायक वही है आदर्श रामन मंडल, नाइया की टीम।

पहुंचाई। श्री प्रशांत गोठी नर्सरी संचालक हैं, उनसे हमने बातचीत की थी और बहुत, हालांकि मेहनत तो देखिए किसी भी काम में लगती है, लेकिन आप यदि इसको कमाई के रूप में लेना चाहें तो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ शौक हैं अपने घर में ही, कुछ ऐसा बगीचा तैयार करना है फूलों का सब्जियों का, तो उस तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। एक जानकारी थी हमने आपको अभी दी, उम्मीद है आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत, गायक वही है आदर्श रामन मंडल नाइया की टीम।

मैं सुन रहे थे आदर्श रावण मंडल की ये कलाकारों द्वारा गाया हुआ भजन, और हमने जैसा आपसे शुरू में एक निवेदन किया था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम आपसे यही अपील करेंगे, यही आग्रह करेंगे कि तंबाकू जैसी बुराई को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे फायदा कुछ भी नहीं है। ये मान के चलिए कि इसमें बीमारी ही हाथ लगना है, और आगे परिवार को भी दिक्कत होती है और शरीर भी जाता ही जाता है ना। दूसरी बात हमने करी आपसे कि तोरई जो है ये सब्जी के रूप में काफी फायदेमंद होती है सेहत के लिए, और इसको आप अपने आहार में शामिल करते हैं तो बहुत सारी फायदे सेहत के लिए आपको मिलते हैं। अगली जो हम आपसे बात अभी करने वाले हैं, चूंकि थोड़ा सा समय भी है, तो हम आपसे चाहते हैं कि कुछ खेती बाड़ी को लेकर चर्चा करें, चूंकि कल से जून माह शुरू हो जाएगा, तो इसमें खेती के लिए आपको कुछ तैयारियां भी करनी है, कुछ सावधानी भी रखना है, और किस तरह से आने वाली फसल के लिए, उपज के लिए खेत की तैयारी हमको करना है, इस पर मोटी मोटी बातचीत आपसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि जैसे बारिश होगी आने वाले समय में, तो उसके बाद आप मिट्टी नरम हो जाती है तो खेत को तैयार कर लें, और गोबर की खाद जैसा हमने अभी बताया था, प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद डाल दीजिए, ताकि बारिश आने पर उस खाद को वो मिट्टी में अच्छे से मिला देगी, वो अपनी प्रोसेस शुरू कर देगी, तो आपको खेती में दिक्कत नहीं होगी। अब जून माह में जो हमारे किसान भाई हैं धान की फसल लेते हैं, उनको भी तैयारी करना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में कपास, सोयाबीन, इस पर भी काम किया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय है अभी, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक योजना हमको बनाकर रखना होगा ताकि हम बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी गड़बड़ी के अपना खेती का काम कर सके। जो किसान भाई सब्जी और फल लेते हैं तो उनके लिए तो हमेशा एक जैसा समय रहता है, लेकिन फिर भी भिंडी, लौकी, तोरई, तोरई के बारे में भी हमने बताया बहुत फायदेमंद है, तो इस पर भी आप ध्यान रखते हुए, इसके साथ साथ करेला, मिर्च, इनकी रोपाई, टमाटर, बैंगन की नर्सरी, इस पर भी काम किया जा सकता है। फल की बात करें तो आम हो गए, अमरूद हो गए, है ना, नींबू, इसके नए पौधे लगाने का समय आ गया है, पुराने

बगीचों में थाला बनाकर आप खाद वगैरह देकर उसको तैयारी कर लें। और जून के चाहे तो तीन सबसे बड़े काम है, आप चाहे तो लिख लें या दिमाग में रखें कि बीज और खाद का स्टॉक करें। नकली बीज बिल्कुल सावधानी से आप देखें कि नकली बीज हमारे घर नहीं आने पाए। खरपतवार का नियंत्रण जरूरी है। जो दवाइयां हैं वो आपको पौध विज्ञानी और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे आप जरूर पूछ लें कि दवाई हमको कौन सी लेना है खरपतवार के लिए, और मौसम पर नजर रखते हुए अपना खेती काम आप करिए। ये बात हमने आपसे करी आज की ग्राम सभा में। अब समय हो रहा है अनुमति लेने का, तो दिलीप सिकरवार को दीजिए अनुमति। जय राम जी की, जय जवान जय किसान।

आप सुन रहे थे किसान भाइयों का मनपसंद प्रोग्राम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और लीजिए पेश है कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज के कार्यक्रम का शीर्षक है पंछी। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले कहते हैं ये कुछ पंक्तियां। मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, इस दुनिया के बाग में मेरा आना जाना रे, जीवन के प्रभात में आऊं सांझ भये तो मैं उड़ जाऊं, बंधन में जो मुझको बांधे वो दीवाना रे। मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, दिल में किसी की याद जब आए आंखों में मस्ती लहराए, जन्म जन्म का मेरा किसी से प्यार पुराना रे, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे।

पेड़ों पर दिखती है कभी और कभी पानी में नहाती, कभी तो पंखों को फैलाकर अपने दूर आसमान में उड़ जाती। ओरी चिड़िया, क्यों डरती हो तुम मुझसे, पास क्यों नहीं आती? अगर मैं पास तुम्हारे आता, झट से क्यों आसमान में उड़ जाती? शायद ये पेड़ और पक्षी है तुम्हारे सच्चे मित्र, इसीलिए तो ये प्रकृति तेरे मन को है भाती, तेरे मन को है भाती।

चहचहाती चंद चिड़िया का बसर था पेड़ पर, मेरे घर एक पेड़ था और एक घर था पेड़ पर। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची ची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसला बनाना। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम शीर्षक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रसारित समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

सुंदर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हूँ। आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पढ़ना चाहते हैं कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोड़ा अकादमी भी गए थे, जहाँ पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल महाविद्यालय

0: विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद एजुकेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किसी कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बात का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, न उसके पास पैसा है, न उसके पास साधन है, न उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं, इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं?
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, पीएमई विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर हो सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईआईटी है, जेई है, नीट है, पीएससी है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। पीएमई विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
1: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुँच सकते, और ये शिक्षा

0: साथ ही प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
1: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है दीक्षा पोर्टल में। स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तब हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
0: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रही हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
2: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उन्होंने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ। उसमें पार्ट बाय पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है। सौरभ, आपसे जानना चाहूंगा स्वयं पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें तो जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
1: ये स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा। उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है, उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपने मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
2: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
1: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिए हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉग इन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉग इन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है, हम कहीं भी कभी भी पढ़ देते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
2: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
1: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम

0: कई पोर्टल भी इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि हम ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई बयान हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हूँ, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब सम्पन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हिरवान और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरी।

0: sabía.
1: हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए पेश है गीत और संगीत का कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आंधी की ये प्यारी सी धुन से।

आंधी फिल्म की ये धुन अभी आपने सुना, संगीत आरडी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का वही गीत।

मेरा नाम जोकर इस फिल्म से ये धुन आपने अभी सुनी मुकेश कुमार की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर, गीत हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का।

से गीत के साथ ही कार्यक्रम साज और आवाज अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे।

0: विजया अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने

0: एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यम

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए, तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, स्टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16 साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्त।

0: चली है चोरी हो चोरी थाली पलक पिया मुरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का कृष्णा महलवंशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की फिल्म है चांदनी। जी हाँ, चांदनी साल 1989 में रिलीज हुई थी, जिसके मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, श्रीदेवी, वहीदा रहमान, सुषमा सेठ, अंचला सचदेव, बीना बनर्जी और अन्य कलाकार। संगीत दिया था शिव हरी ने, निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये पहला प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, 14 सितंबर 1989 को बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। ये फिल्म थी चांदनी, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, और इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प और अनकही है जितने इसके गाने और दृश्य। आज चांदनी फिल्म को रिलीज हुए 36 साल पूरे हो गए हैं। उस समय बॉलीवुड में एक्शन प्रधान और हीरो सेंटर्ड फिल्में बन रही थी, लेकिन यश चोपड़ा ने उस दौर में हीरोइन सेंटर्ड रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दर्शकों को एक खूबसूरत रोमांटिक और संगीत से भरपूर अनुभव देने की ठानी।

श्रोताओं, चांदनी फिल्म का मुहूर्त नवंबर में हुआ। यश चोपड़ा ने इस अवसर पर श्री देवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को शामिल किया। मुहूर्त में एक रोमांटिक शॉट शूट हुआ। शुरुआती वजन के अनुसार श्री देवी और ऋषि कपूर के किरदार की शादी होती थी और उनका एक बेटा होता। जनवरी में फिल्म के सेकंड हाफ के लिए यश चोपड़ा पूरी यूनिट लेकर दिल्ली गए और दो दिन शूट किया, लेकिन मिक्सिंग के दौरान यश चोपड़ा को लगा कि फिल्म सही दिशा में नहीं जा रही। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है और उन्होंने फैसला किया कि स्क्रिप्ट में बड़े बदलाव किए जाएं। अगले दिन सुबह से ही यश चोपड़ा स्क्रिप्ट पर काम करने लगे और रात तक इंटरवल तक की स्क्रिप्ट बदल दी।

चांदनी उस समय की बॉलीवुड हीरोइन सेंटर्ड फिल्म थी। पहले यश चोपड़ा रेखा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन रेखा ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद श्रीदेवी को ऑफर दिया गया और उन्होंने इसमें काम करने को हामी भर दी। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि श्रीदेवी के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। श्रीदेवी उन पर पूरा भरोसा करती थी। इस फिल्म में उन्होंने श्रीदेवी का एकदम नया लुक पेश किया, जिसमें नई ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम भी शामिल थे।

चांदनी के पहले शेड्यूल के लिए यश चोपड़ा ने ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को साइन किया था, लेकिन ईगो क्लेश की वजह से भानु अथैया ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद लीना दारो को कॉस्ट्यूम डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई। यश चोपड़ा खुद भी लीना दारो के साथ मिलकर श्रीदेवी की ड्रेस और लुक पर काम करते थे। उनके इस लुक ने लोगों के बीच एक स्टाइल आइकॉन बना दिया। फिल्म फेयर अवार्ड में श्रीदेवी को चांदनी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्होंने वही अवार्ड चालबाज फिल्म के लिए जीता।

दोस्तों, चांदनी फिल्म का बजट था 8 करोड़ रुपए और इसने 27 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। इसके अलावा यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म से बतौर असिस्टेंट फिल्मों में काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्म चांदनी की कहानी। कार्यक्रम था एक ही फिल्म से, और इसके साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म अब यहीं पर समाप्त होता है। चलते चलते दीजिए आपके अपने दोस्त कृष्णा महलवंशी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के फनकार है जगजीत सिंह।

गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और आइए सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज में।

इस गजल के बाद ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के लिए 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें

0: 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है पानी पीते रहिए धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cyber security professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palanpur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: FM Wave 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे अब आज्ञा दीजिए शुभ रात्रि जय हिंद

0: Royal Challengers Bengaluru, RCB at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।